नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्रीराम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूरिया कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह और पूरिया कल्याण में ऋषभ जो है पूरिया की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूरिया कल्याण और पूर्वा कल्याण ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरिया कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्याकाल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है और पूरिया पूरिया धनाश्री श्री, लेकिन बाकी जो राग हैं उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद, यानी पूरिया धनाश्री पूरिया, इन रागों के बाद कोमल ऋखब और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूरिया कल्याण जो राग है संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय, यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं, बजा देते हैं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी है निषाद। पूर्यांग से पूर्या कल्याण जो जाता है हम देख चुके हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा कल का राग है श्री। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूप।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में लाल पत्थर फिल्म के गाने के साथ। नीरज हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप।

अगला गाना हमने लिया है बेदर्द ज़माना क्या जाने, इस फिल्म से मुकेश ने गाया, से लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है कल्याण जी वीर जी शाह ने।

0: इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आज हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नीरज जी की चुनिंदा रचनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नीरज जी के ही लिखे गीत के साथ। SD बर्मन की है तर्ज, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं और फिल्म का नाम शर्मीली।

मुकेश के गाए हुए इस गाने के साथ आज का हम हेरा ही प्यार की ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। आज विविध भारती नो अमदावाद केंद्र थोड़ी क्षणों में एटले के बराबर 7:45 आप सांभळशो गुजराती में समाचार।

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज

0: बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जाँच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक

0: की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की

0: पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो आज भी किसी मेज़ पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई

किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हो। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं, वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं।

एक अच्छी पुस्तक पाठक के भीतर प्रश्न भी जगाती है और उनके उत्तर खोजने की प्रेरणा भी देती है। जब भी कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं। सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हाउसफुल फिल्म के गाने के साथ। तरुण सागर, एलिसा मेंडोंसा और

अगला गाना हमने लिया है प्यार इम्पॉसिबल, इस फिल्म से ऋषिका सावंत की आवाज़, अनविता दत्त ने लिखा इसे और संगीत से संवारा सलीम सुलेमान ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए

0: अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए लव्यापा फिल्म का शीर्षक गीत, नकश अजीज और मधुवंती बाग्शी की आवाजें, सोम के बोल और तर्ज बनाई व्हाइट नाइज कलेक्टिव्स ने।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
1: आईटीआई मां प्रवेश मेळवाथी वंचित उम्मीदवारों माटे प्रवेश मेळवानी वधु एक तक। प्रवेश सत्र 2026 अंतर्गत बीजा राउंड माटे आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पर थी ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 19 जुलाई थी 22 जुलाई 2026 सुधी भरी शकाशे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में सुपर 30 फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कैलाश खेर और साथियों की आवाजों में क्या सुपर कूल हैं हम, इस फिल्म का गाना कुमार के हैं बोल और मीत ब्रदर्स अंजन की है तर्ज़।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए हर्षित सक्सेना और भूमि त्रिवेदी की आवाज़ों में सब कुशल मंगल फिल्म का गाना। समीर अनजान हैं, गीतकार और संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।

दोस्तों, आज है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रखकर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों तथा समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाना था। राष्ट्रीयकरण से पहले अधिकांश बैंक निजी स्वामित्व में थे और ऋण सुविधा मुख्यतः बड़े उद्योगों एवं संपन्न लोगों को ही प्राप्त होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ बहुत कम थीं, जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को साहूकारों पर भर रहना पड़ता था। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश भर में बैंक शाखाओं का तीव्र विस्तार हुआ तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार और गरीब वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध होने लगा। महिलाओं, विद्यार्थियों तथा

स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिली, तो अपने आप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाज़ों में राबता फिल्म का गाना सुनवा रहा हूँ। कुमार के हैं बोल और सोहराबुद्दीन की तर्ज़।

सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाज़ों में भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार हैं अमजद नदीम।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान और उस्मान मीर की आवाज़ों में दुकान फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा थे गीतकार और संगीतकार थे श्रेयस पुराणिक। अभी आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम वेद भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से। आवाज़ हैं शशि और डीजे खुशी की गगन आहुजा के बोल और शशि डीजे खुशी की तर्ज़।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: श्रोताओ नमस्कार।
1: हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं।
2: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
1: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
0: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

जगोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं, वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: नई उम्र की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनके फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते। उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से।

मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

में दुनिया के चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं,

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपये महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपये महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

दिल्ली पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी, तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

नीरज के लिखे जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका

0: मेरे सपने इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देवानंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देवानंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देवानंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द ना आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देवानंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देव आनंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द
2: रंगीला।

इसके बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

नीरज ने फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे

समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुंचाते।

नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।

नीरज ने तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हुक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: का ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

नीरज ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

स्वभाव कोई भी हो, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

नीरज एक अनोखे इंसान रहे। जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।

हालांकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।

नीरज का इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।

नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ITI માં પ્રવેશ મેળવવાથી વંચિત ઉમેદવારો માટે પ્રવેશ મેળવવાની વધુ એક તક। પ્રવેશ સત્ર 2026 અંતર્ગત બીજા રાઉન્ડ માટે ITI ઓનલાઈન એડમિશન સિસ્ટમ પરથી ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ 19 જુલાઈથી 22 જુલાઈ 2026 સુધી ભરી શકાશે।
2: એક પ્રકારથી PM જય અબ ગરીબો કી જય બન ગઈ।

0: मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: ओ तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओ, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।
4: कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी, हाँ हाँ हाँ, टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

कल आज और कल इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

जयदेव का सर्वद किया ये गीत आपने सुना, नीरज का लिखा, आशा भोसले और सखियों की आवाजें थी। रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के पहले श्रोताओ नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे, रोशन की तरस।

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देव बर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोताओ, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: ओ तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।

0: आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
1: हो तो

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, थोड़ा मौसम का तकाजा है, थोड़ा थोड़ा सा प्यार, थोड़ी खुशियाँ, तो सुरों सरगम की बहार लिए और तमाम गीतों को लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे उन श्रोताओं के लिए बता दें जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या जो हमारे नए श्रोता हैं, उन्हें लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़ सकते हैं इस पते पर हमारे कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। आज की जो इबारत है श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो फेसबुक पर देखा है, उन्होंने तमाम सारे कमेंट्स भी लिखे हैं, तो ये इबारत अपने रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। कायनात की सुंदर तस्वीर किसी शहंशाह के ताज में जड़े नगीनों से कम नहीं, इन्हें देखते आँखें थकती नहीं। मुझे याद है वो जीवन से भरी आँखें जो तस्वीर में भी बातें करती थी, वो जुल्फ झूमती हवाओं सी जो प्यार में अरमानों को जगाती है, प्यार बनकर दिल के साहिल से टकराती है। मोहब्बत के मोती थे यादों के कैनवास पर, लेकिन वो बात तस्वीर में कहाँ जो आपकी बातों में है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तस्वीर के बारे में लिखा है। जी हाँ, तस्वीरें जो कभी हाथ से बनाई गईं, कभी दिल में उकेरी गईं, कभी प्रकृति के सुंदर नज़ारों में नजर आईं, कभी जिंदगी में रंग भरती हैं तो कभी सपनों में चित्र बनकर उभरती हैं। ये तस्वीरें आपको कितना प्रभावित करती हैं श्रोताओं, तस्वीरों से जुड़ी यादें आपको साझा करनी है आज के इस कार्यक्रम में। इन तस्वीरों में कुछ फूल भी रंग भरते हैं, कुछ नज़ारे भी रंग भरते हैं, कुछ सितारे भी रंग भरते हैं।
1: गाना सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।

एक तस्वीर इस गीत में नज़र आती है श्रोताओं, यानी कह सकते हैं कि अभिनेत्री की तस्वीर है। और ये कौन सी अभिनेत्री हैं, ये अगर आपने फिल्म देखी है तो बता सकते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ में, नीरज के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। और हमने गीतकार का नाम पूछा था, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक इसका जवाब भी लिख भेजा है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें ठहरे हुए समय, फ्रोजन टाइम को परिभाषित किया करती हैं, जो कि बीते हुए लम्हों को उसी रूप में संजोए रखती हैं जैसे उन पलों को पुराने समय में हमने जिया। जब यादें कुछ कुछ धुंधलाने लगती हैं, तब तस्वीरें ही हमें यादों के उन्हीं गलियारों में पहुंचा देती हैं जहां यहां तस्वीरें केवल इन्होंने इनका ये जो मैसेज है वो

कहीं इधर उधर हो गया है श्रोताओं, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर ये मिल जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये इबारत यादों के कैनवास पर मोहब्बत की एक ऐसी नज़्म है जहाँ तारीफ से शुरू हुआ सफ़र सादगी और हकीकत के दीदार पर आकर मुकम्मल होता है। इसमें मोहब्बत की शिद्दत भी है और उर्दू हिंदी शायरी की वो सौंधी सी महक भी। जिस तरह कायनात की तुलना शहनशाह के ताज में जड़े नगीनों से की गई है, वो पढ़ते ही जहन में एक भव्य और चमकदार दृश्य पैदा करता है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों के बारे में कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल और लीडर फिल्म के गीत को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि तस्वीरों यादों और घटनाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। तस्वीरों को देखते ही हम एक सेकंड में यादों के गलियारों में पहुंच जाते हैं। तस्वीरें अतीत को जगाती हैं और अगाध भविष्य के लिए धरोहर की तरह हैं, जैसे वो खूबसूरत ताजमहल या फिर जीवन से भरी तेरी आँखें। दुनिया में ये सब खूबसूरत कायनात की तरह जीने का सबब भी तो हैं। कुछ तस्वीरों में प्रेम भरी नदी सतत बहती दिखाई देती है। इस संसार में कुछ भी ठहरता पर तस्वीरों में हम जिंदा रहते हैं, जैसे कि ताज और हमारे बुजुर्ग जिनसे हमारा गहरा नाता जुड़ा है। कल को हम भी इन्हीं तस्वीरों के द्वारा याद किए जाएंगे। तस्वीरें वक्त की ऐनक हैं। अगर तस्वीरें न होती तो हम ताज का तस्वीर कैसे कर पाते।

श्रोताओं, क्या आपने ताज का दीदार किया है? अगर किया है तो चांदनी रात में ये कैसा नजर आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आपको बताने हैं, और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत तस्वीर की बाहरी शोभा और यादों की

भीतरी गहराई का सुंदर संतुलन बयां करती है। तस्वीरें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का आईना होती हैं, खूबसूरत मगर खामोश। वे धड़कनों को थाम कर रखती हैं लेकिन उनमें जान नहीं फूंक सकती। असली जुदाई एहसास तो उस आवाज़ की खनक और बातों के उतार चढ़ाव में है जो रूह को छू लेती है। कैनवास पर उकेरी गई कायनात कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो उस एक पल के सामने फीकी है जब किसी अपने की बातें सीधे दिल के साहिल पर दस्तक देकर स्मृतियों को फिर से जीवंत कर देती हैं। सच ही तो है, तस्वीरों में रूप बसता है पर बातों में रूह। एक और श्रोता ने लिखा है, कायनात की खूबसूरती की तस्वीर किसी एक रूप में नहीं है, वो तो उगते सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर डूबते सूरज के नारंगी आकाश तक में है। कभी रात के सन्नाटे में तो कभी टिमटिमाते तारों में, कभी माँ के हाथ के खाने में तो कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी में। कायनात की तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें मोहब्बत है, और मोहब्बत की तस्वीर इसलिए खूबसूरत इसलिए है कि उसमें कायनात है। तो क्या ही बात है श्रोताओं, आप ये बताएं कि क्या आपको तस्वीरें बनाना पसंद है? प्रकृति की तस्वीर आपको बनाना अच्छा लगता है या फिर किसी इंसानी व्यक्तित्व की? एक और सवाल आपसे जोड़ लेते हैं कि कौन सा रंग तस्वीरों में भरना आपको सबसे प्यारा लगता है? वैसे जो पहला रंग गीत में भरा था वो प्यार का रंग था, जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया, और अब इस गीत को आपको पहचानना है। जो चित्रकार हैं उनका नाम बताना है, और जो चित्रकार हैं वो किन की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

सुरीला सफ़र का सफ़र तो यूं ही चलता रहेगा, पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। FM 96.7 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारतीय विज्ञापन प्रसारण सेवानो आ अमदावाद केंद्र छे। बराबर 1:20 आप सांभळशो समाचार, गुजराती समाचार, प्रतीक्षा समाचारों नी।

0: राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। वहां वो राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा, प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मेकोस्की और संसद अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगी। वहां वो राष्ट्रपति निकोसुर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। वो भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज सवारे नवी दिल्ली में जंजीबारना राष्ट्रपति और कार्यकारी क्रांतिकारी परिषद अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिर्वी ने मळ्या। सोशियल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर जणाव्युं कि तेमनी मुलाकात दरमियान तेमणे उच्च शिक्षण, क्षमता निर्माण, पाणी पुरवठो, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में भारत तांजानिया सहयोग ने विस्तृत करवानी चर्चा करी। पनामाना विदेशमंत्री हावियर एंड्युआर्डो मार्टिनेजी आचा वाक्चेज आज सवारे भारतनी 5 दिवसनी मुलाकाते नवी दिल्ली पहुंचा है। तेओ आवतीकाले विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साथ मुलाकात करते। तेओ बुधवारे नवी दिल्ली में बंदरो, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पण मळशे। जम्मू और काश्मीर में आज वहली सवारे पूंछ जिले में भारे वरसद ने कारण भूस्खलन और अचानक पूर आता 3 महिला सहित 4 मौत थे, केटलाक लोग गुम थे। सतत वरसाद बाद राजौरी शहर में अचानक पूर आयु, जेमा मोटी संख्या में लोग ने सलामत स्थलों स्थानांतर करवानी फरज पड़ी। अमरा जम्मू संवाददाता ने अहवा मुजब स्थानिक वहीवटतंत्र की मदद की बचाव और राहत टीमों असरग्रस्त विस्तारों ने परिवारों ने सलामत रीते बहार काढ़ कामगिरी में जोड़ाई है। लद्दाख में कारगिल संग्रह गाम में पूर ने कारण कारगिल जांस्कर राष्ट्रीय धोरीमार्ग बंद करायो छे। दरमियान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे आज जम्मू और काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला साथ बात कर राजौरी जिले में भारे वरसद ने कारण सर्जाये पूर की परिस्थिति ताग मेव्यो। आ समाचार आप आकाशवाणी पर सांभी रहा छो। आ समाचार जीवंत प्रसारण आप अमरी यूट्यूब चैनल EIR न्यूज गुजरात पर सांभी सकशो। बधु समाचार अमरी वेबसाइट newsoneir.gov.in/u और मार एक्स हेन्डल EIR_ABAD ने फॉलो करशो। जम्मू और काश्मीर में प्रतिकूल हवामान परिस्थितियों ने कारण श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा स्थगित कर कटरा और त्रिकुटा पर्वतीय विस्तार तथा पहलगाम और बालताल में प्रतिकूल हवामान वच्चे श्रद्धाळुओं की सलामती सुनिश्चित करने सावचेती पगला तरीके यात्रा ने अस्थायी रूपे अटकाववामां आवी छे। यात्राळुओं ने यात्रा फरी शुरू थवा अंगे सत्तावार माध्यमों पर आधार राखवा सलाह आपवामां आवी छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज महान क्रांतिकारी और स्वातंत्र्य सेनानी मंगल पांडे ने तेमनी जन्मजयंती पर श्रद्धांजलि अर्पी। सोशियल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्रीए कहूं मंगल पांडे मातृभूमि गौरव और सन्मान ने जाळवी राखवा शहीदी वहोरी थी। तेमणे कहूं मंगल पांडे की देशभक्ति और बहादुरी की गाथा राष्ट्र की पेढ़ीओं ने प्रेरणा आपती रहेशे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित मंत्रिमंडल सभ्यों मंगल पांडे ने श्रद्धांजलि अर्पी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 जुलाई आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश लोगों समक्ष पोताना विचारों रजू करते। आ मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136मी कड़ी हशे। नागरिकों टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 द्वारा कार्यक्रम माटे पोताना विचारों ने सूचनों मोकली शके छे। तेओ नरेन्द्र मोदी एप अथवा MyGOV ओपन फोरम द्वारा ऑनलाइन पण पोतानो अभिप्राय मोकली शके छे। आ कड़ी माटे सूचनों आ महीनानी 24मी तारीख सुधी मोकली शकाशे। युक्रेन द्वारा रशिया पर करायेला ड्रोन हुमला में 9 मौत और 80 वधु लोग इजाग्रस्त थयाना अहेवाल छे। रशिया अधिकारियों जणाव्या अनुसार युक्रेन ड्रोन द्वारा 2 वेरहाउस ने निशान बनावामां आव्या, जेमां एक मॉस्को नजीक और बीजू तांबो प्रदेश कोटोवस्क में स्थित हतुं। युक्रेन रशियाना ऊर्जा और सैन्य ठेकाणाओ पर सतत हुमला करी रह्युं छे। 2 ओलिम्पिक चंद्रक विजेता पीवी सिंधुए जापान ओपन सुपर 750 बेडमिंटन टूर्नामेंटनो खिताब जीती लीधो छे। आ खिताब जीतनार सिंधु प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन्या छे। सिंधुए फाइनल में 3 विश्व विजेता अकाने यामागुची ने 21-17 थी हरावी खिताब पोताना नामे कर्यो। आ अगाउ सिंधुए 2019 विश्व चैम्पियनशिपनो अने वर्ष 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंटनो खिताब जीत्यो हतो। भारत और इंग्लैंड वच्चे श्रेणीनी निर्णायक तीजी वनडे आज लंडनना लॉर्ड्स खाते रमाशे। आ मैच भारतीय समय मुजब बपोरे 3:30 शुरू थशे। कार्डिफमां बीजी वनडे मैच दरमियान इजा थवाने कारणे ऑलराउंडर वॉशिंग्टन सुंदर टीममांथी बहार थता हर्ष दुबे ने टीममां सामेल कराया छे। फीफा वर्ल्ड कपना फाइनल मुकाबलामां आज आर्जेंटीना और स्पेन न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम खाते टकराशे। भारतीय समय मुजब

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोते लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान कुछ छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज़ अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज़ आइज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज़ यूजलेस। ब्यूटिफुल आइज आर पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोइम्स आर as well as prose have described the beauty of eyes. All the best. इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं, कुछ आँखें कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं, वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं, मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं, तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहाँ सहेज पाती हैं, इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है वो बात तस्वीर में कहाँ, जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोता, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिटती नहीं हैं, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हों तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफ़र पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी ख़ास जगह पर उतारी हो, तो आप हमसे ज़रूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूँ तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफ़ल एसएलआर चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफ़ल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएँ हाथ में मेरे मैनेजर सर हैं। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

12वीं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज़ में, अखमार बाराबंकी के बोल थे, शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ ख़राब हो गई हैं, तो पेंटिंग जो है, मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश, कलर, बोर्ड बहुत ख़रीद कर दिए। अब वो नहीं हैं और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आएं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड वाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है, मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की, काली घटाओं की, रात में चांद की, तारामंडल की, सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, नदियां, तालाब, झील, पर्वत, देवदार और वृक्ष पक्षी, ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती, ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज़ में रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जी हाँ, परिवार के संबंध

संबंधियों, यात्रा, प्रकृति, सभी की हैं तस्वीरें, और नाना नानी, दादा दादी जी, माँ पापा की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी हैं। तो तस्वीरों की यादों को ताज़ा करता कार्यक्रम सुरीला सफ़र अब यहीं संपन्न होता है। आप रहिए विविध भारती के संग। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए विविध भारती के संग, क्योंकि आगे भी हैं हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो आज भी किसी मेज़ पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हों। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज़ और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश

0: के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।

0: भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आईटीआई मा प्रवेश मेळवाथी वंचित उमेदवारों माटे प्रवेश मेळवानी वधु एक तक। प्रवेश सत्र 2026 अंतर्गत बीजा राउंड माटे आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पर थी ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 19 जुलाई थी 22 जुलाई 2026 सुधी भरी शकाशे।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आईटीआई मा प्रवेश मेळवाथी वंचित उमेदवारों माटे प्रवेश मेळवानी वधु एक तक। प्रवेश सत्र 2026 अंतर्गत बीजा राउंड माटे आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पर थी ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 19 जुलाई थी 22 जुलाई 2026 सुधी भरी शकाशे।
2: આપ માણી રહ્યા છો સરસ મજાના ગુજરાતી ગીતો વિવિધ ભારતીના અમદાવાદ કેન્દ્ર પરથી। આવો હવે માણીએ મનહર ઉદાસના સ્વરમાં આદિલ મંસૂરીની શબ્દરચના।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आईटीआई मा प्रवेश मेळवाथी वंचित उम्मीदवारो माटे प्रवेश मेळवानी वधु एक तक। प्रवेश सत्र 2026 अंतर्गत बीजा राउंड माटे आईटीआई ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम परथी ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 19 जुलाई थी 22 जुलाई 2026 सुधी भरी शकाशे।
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
3: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
3: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
3: समझ गया।
4: આંખથી ઓઝલ થશે શું ફાયદો? યાદમાંથી શક્ય હો સંતાવને ઓગળે હોવાપણાનું આવરણ કોઈ દી વરસાદમાં જઈને નાવને સાવ રેઢું જ્યાં મૂક્યું તું બાળપણ એ જ રસ્તે આજ પાછા જાવને। કાર્યક્રમ આવો હવે માણીએ રાસબિહારી દેસાઈ અને વિભા દેસાઈના યુગલ સ્વરોમાં ભગવતી કુમાર શર્માની શબ્દરચના।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीली गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जीने की राह फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाहा जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से, केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मनचाहे गीत।

फिल्म आंधी का दुगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

लिखा है रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना असिरी सिल्ला जिला विला सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी माहिती, चंद्रया मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से इन्होंने जगह का नाम नहीं लिया।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए। मैं
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार। आप कुछ सुन रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ सब ठीक ही है।
3: क्या कह रहे हैं आप?
2: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहाँ, जहां धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
3: लेकिन आप जा कहां रहे हैं
1: पिताजी?
2: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
1: आराम से बैठिए ना।
2: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
1: इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
2: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
2: क्यों,
1: नहीं पूछना चाहिए क्या?
2: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
1: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
2: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
1: क्या कह रहे हैं आप?
2: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा रहा।

0: क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई।

0: लिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश का रंग तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं।

0: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
1: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
0: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
1: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
0: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
1: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
0: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
1: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित कहाँ जाएगा?
0: फिर कहाँ गए होंगे?
1: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
0: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
1: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
0: गलती तो जरूर हुई है माँ।
1: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
0: ऐसा न कहो माँ।
1: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
0: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
1: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा?
0: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
1: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
0: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
1: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
0: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
1: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठकती रही और वे मेरी आंखों के सामने से चले गए।
0: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
1: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी।
0: ये क्या कहती हो माँ?
1: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
0: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
1: तुम्हें बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
0: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
1: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
0: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
1: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी ही आई हूँ माँ।
1: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
1: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
1: भूख होगी तो खा लूंगी।
0: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
1: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
0: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
1: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
1: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।

0: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
1: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
0: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ? मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
2: ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
0: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूं।
1: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
0: क्या करूं माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूं माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ। काश कि मैं नहीं रहती माँ।
1: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
0: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: मैं अभी जा कहा रही हूं? तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूं, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूं, बहुत दुखी हूं।
2: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
1: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
3: ये एकाएक क्या हो गया भैया?
2: तुम सब कुछ जानते हो नरेश,
3: मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सन्न रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तभी आपका तार मिला।
2: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
3: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
2: हाँ, मिल गया।
3: लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे, कैसे गए यहाँ से?
2: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
3: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
2: दूसरा क्या?
3: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
2: तुम सब समझते हो नरेश।
3: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
2: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
3: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है?
2: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूं? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
3: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
2: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
3: गए तो थे।
2: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
3: हुई थी।
2: तुमने क्या कहा था?
3: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
2: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
3: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
2: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
3: उन्होंने क्या कहा?
2: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
3: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
2: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20

0: 20,000 तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ।
0: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था।
0: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
0: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
0: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
0: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
0: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
0: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही।
0: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाएं। कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
0: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
0: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
0: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
0: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए।
0: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं दे सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचूं माँ?
2: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
2: अब मैं क्या करूंगी बेटे, अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
2: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यह सब मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
2: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों नहीं माँ, कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
2: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
2: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
2: इतने रुपए लगेंगे।
0: हम लोग खर्च करने को तैयार हैं माँ।
2: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
2: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
2: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
2: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा।

0: भी शादी होगी।
1: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा?
1: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
1: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ, सोच ही लिया है।
1: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
1: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
1: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
1: सोचना क्या है?
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
1: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
1: हाँ, शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
1: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
0: हाँ, रुपए तो लगेंगे ही।
1: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
1: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
1: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
1: क्या, सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
1: अनरेश,
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
1: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
1: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
1: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: और क्या सोचना पड़ेगा?
1: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
0: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
1: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें? अपने तीन बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया, भैया, भैया, क्या हो गया भैया?
0: क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
0: क्या हुआ क्या नरेश?
2: चक्कर दिखे थे भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया।

0: मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश? कृष्णा ने लिखा है।
1: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी, तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ। अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है। मेरे कारण पिताजी घर से चले गए। मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो। मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती। मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई।

लड़की हुई, लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ, तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: ऑफिस तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भाई मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहाँ भी हो लौट आइए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, कृष्णा नहीं रही, माँ मरना सुन्न है।
1: नहीं रही, माँ मरना सुन्न है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, कृष्णा नहीं रही। क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
0: आपकी पत्नी बीमार है।
1: हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई? कैसे मरी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
3: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती।
5: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे
1: पुराना लग रहा नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी। और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से कि नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई? बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई। कहते और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
2: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में जिनको मेरी माँ जैसे माँ नहीं मिली।
1: जी जी। हाँ,
2: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
2: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
2: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको,
2: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का

0: जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते, मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे। कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें, प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी। उसने भी कैम्ब्रिज में, जब लड़कियाँ मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुँच जाती थी, उस ज़माने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया, लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहाँ फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर, चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे आ गई।
0: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे। और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम
1: परांजपे जी। हाँ। एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है। तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओह डियर, चलो मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी माँ को कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांगर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोलिंड, हाँ, मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की, हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोड़ीवाड़ा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी। और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनके, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची, तो हमने स्टैनिस्लावस्की

0: और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: सही
0: हाँ, कि
1: सही
0: रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हटके, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबोगरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: हाँ,
0: क्यों,
1: ये कमाल की बात है कि आप
0: हाँ,
1: बड़ी
0: नहीं
1: शरारती थी,
0: नहीं
1: रंगदार
0: शरारती
1: थी।
0: नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी
1: बस
0: शरारती, लेकिन
1: जरूरतमंद
0: मेरी
1: थी।
0: माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे, तुम सही की तरह पिटाई करने का, हाँ।
1: अरे
0: और
1: बाप रे,
0: मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड, कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना,
1: वाह वाह,
0: हाँ,
1: बड़ा प्यारा
0: तो
1: था ये।
0: हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती ही थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी, नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी, नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा। और
1: वाह
0: फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे, हाँ, दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना, वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से।
1: गजब
0: और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह।
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी, फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ, गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम लिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्गुसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई।
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुना में, कि सही के गुड़िया की शादी,
1: गजब गजब, ये तो
0: हाँ
1: इतनी भव्यता के साथ शादी की गई।
0: जी, और
1: मुझे
0: मेरी
1: ना,
0: अपनी शादी में मां नहीं आई
1: हाँ ये भी एक विडंबना
0: हाँ,
1: की बात है।
0: लेकिन
1: ये
0: हाँ
1: वाला जिक्र आगे की तरफ
0: हाँ ओके
1: करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे।
0: हाँ
1: लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहां पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहां एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं,
1: फिल्म में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: लगता है उसी जज्बात को वो
0: वाह
1: आगे
0: वाह,
1: बढ़ा रहा
0: क्या
1: है। तो
0: बात,
1: वो गाना
0: सुनाइए
1: सुनते हुए
0: सुनाइए
1: आगे बढ़ाते
0: जी।
1: हैं बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत, और दुनिया भर के साने गुरुजी, और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी, और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकाना कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली, और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा उसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या क्या क्या नहीं होता। तो वो सब, मैं इतना, मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज़्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इप्सन का डॉल्स हाउस, आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया, और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर

0: मराठी में जागा भाड़ानी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे।
1: जी
0: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
1: जीवन
0: तो
1: शैली का
0: जीवन शैली का, बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे। वहाँ एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुँचते थे। और जाते जाते अच्युत मामा कहानियाँ सुनाते, लेकिन कहानियाँ ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियाँ।
1: हाँ, ये बड़ा मजेदार
0: हाँ।
1: है।
0: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियाँ मुझे सुनाई। और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियाँ उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है। फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
1: वाह
0: कहानी, और
1: वाह,
0: वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मज़े की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई।
1: जी
0: राम
1: जी
0: जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
1: शायर हुए।
0: गाने
1: जी
0: वाले हैं।
1: जी
0: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हौसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है। तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए, सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। हाँ, सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो
1: जी
0: सुरई की नोक अटकती है, और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा
1: खींची
0: रही
1: चली
0: है,
1: आती
0: और
1: है।
0: ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा, इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो उसने
1: हाँ
0: कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो, और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी, और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूँ, थोड़ा घमंडीपन लगेगा,
1: जी
0: लेकिन सच बात कहूँ तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज़्यादा बेहतर था।
1: वाह,
0: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है, इतना मज़ा नहीं आया। और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है, पता
1: गजब गजब
0: नहीं।
1: गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते
0: जी,
1: हैं, वो
0: देखो वो
1: फिल्म
0: साथ साथ होता रहा
1: कह
0: है
1: के
0: ना।
1: सुनाते हैं,
0: हाँ
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
0: हाँ
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
0: जी
1: बनाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन दो बातें जो हैं वो
0: हाँ
1: मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं
0: हाँ
1: पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली,
0: हाँ
1: ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ
0: जी
1: भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
0: हाँ
1: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है।
1: जी
0: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नज़दीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू हुई। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांठ पे कौन? मैंने कहा, जी मैं हूँ, ये आपको आया है। पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन मराठी अनाउंसर के।

0: ऑडिशंस और मुझे बुलाया था।
1: वाह,
0: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी। ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि
1: जी
0: ये किसने मुझे क्यों भेजा। ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन। मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते हैं मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकिन जमखाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहाँ पहुँची और ड्यूटी ऑफिसर मिले। उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज़ पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहाँ। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल। हाँ,
1: ओहो
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
1: जी
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में। तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 101 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
1: वाह,
0: स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम
1: वो पूरा
0: ब्रह्मण्य
1: याद है,
0: वरे,
1: शिवतांडव स्तोत्र।
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और बिजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो वो
1: बिल्कुल
0: मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी
1: भारी
0: होते हैं,
1: होते हैं, खींच
0: वो
1: के
0: ऊंई
1: खोलो।
0: करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह। ओहो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है। मैंने कहा नहीं अब क्या है, कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी,
1: जी
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपये,
1: वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना, इतनी मज़े की बात, इतना मज़े का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपये। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ़ बनाया है, और ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स, गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ
1: अच्छा अच्छा
0: दिन का
1: वाह
0: जो भी छोटा मोटा। तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई।
0: 3 गुना, फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो 1-2 दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी, बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पियर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वॉज ग्रेट फन, आई एंजॉयड
1: और
0: दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक

0: किया।
1: नहीं ट्रंक कॉल नहीं, वह
0: हाँ
1: बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी।
0: जी
1: तो तीन जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था। और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फ़ोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुलकर के घर का फ़ोन दे सकती हैं?
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो। तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ हाँ रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना, मैं
0: वाह
1: शायद,
0: वाह।
1: हाँ हाँ जी हाँ मैं बोल रही हूँ, अरे ताई। एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
0: तारीफ ही करती
1: बेचारी
0: रहे।
1: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम
0: जी
1: माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
0: आवाज से
1: आवाज से,
0: वाह।
1: और ये पहला अनुभव था। और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं। जो आनंद वो पहले उसमें था ना कि
0: जी
1: ताई ताई बोलते हैं, यू नो,
0: वाह।
1: वो दोबारा नहीं, कभी नहीं,
0: लेकिन
1: दोबारा
0: जिनका
1: नहीं
0: नंबर
1: कभी।
0: आप ढूंढ रही थी,
1: हाँ
0: गदी
1: हाँ
0: माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी
1: हाँ
0: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
1: अच्छा कौन
0: दो
1: सा?
0: आंखें 12 हाथ उन्होंने
1: अरे
0: लिखी थी, जो
1: ओके,
0: ओपन जेल कंसेप्ट पर जो
1: कमाल है,
0: फिल्म थी,
1: इत्तेफाक की
0: वो
1: बात।
0: तो गदी माँ ने ही लिखी थी, है
1: सुनिए
0: ना। तो
1: सुनाइए,
0: मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहां जगह
1: वेरी
0: बनाते
1: गुड,
0: हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
1: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन।

0: 10-12।
1: बाप रे जी।
0: हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांचे कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है, और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहाँ बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं, और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मणती बोर, एक पहा किती तेरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है।
1: जी
0: फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है लिखता है, और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांचे कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्टकार्ड आया, फैन मेल, किसका, पु ल देशपांडे।
1: अरे वाह
0: हाँ,
1: वाह वाह,
0: कि
1: क्या बात है।
0: सही तुझी श्रुति का आइक ली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली, और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाचा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांचे कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, हाँ, 3 नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मज़े की बात, तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
1: वाह
0: हाँ, और तब मैं बस में बैठी, और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम
1: जी
0: बताती हूँ,
1: जी जी
0: हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल हैं, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के ज़माने से उनकी लड़ाइयाँ शुरू है, और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट, इन अ ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा फलां दिन का, ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहाँ देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुँच गई। फिर ये किताब भी छपी, और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर, भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, मौस प्रकाशन ने छापी ये किताबें, और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताब

0: में इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में, और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते
1: कर भी
0: रहते
1: लेते
0: हैं,
1: हैं लोग।
0: कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहां ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा सचमुच।
1: वो एक लड़की
0: हाँ, वो
1: दिखी
0: नीचे
1: और
0: दिखती है
1: वो
0: नेहा।
1: पत्ते
0: हाँ
1: से फैसला करते हैं कि
0: अच्छा
1: जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो
0: अच्छा ओ
1: जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं, और वो दो मुस्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर, और
1: बिल्कुल
0: उनकी
1: बारी बारी
0: बहुत।
1: से वो फारूक
0: हाँ
1: शेख रह जाते हैं।
0: हाँ
1: चश्मे बहादुर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने
0: हाँ
1: ताश से ताश
0: हाँ
1: जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बहादुर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर
0: कौन
1: की
0: कौन
1: कहानी
0: सा
1: चल
0: गाना
1: रही है,
0: सुनाओगे?
1: आपकी पसंद।
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार
1: बिल्कुल
0: खड़ी।
1: सुनते हैं
0: हाँ
1: काली घोड़ी द्वार
0: हाँ
1: खड़ी।
0: हाँ
1: वाह सुनते हैं।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है।
1: जी
0: ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा, और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था, हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का, हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे, अब अगला शो कब है? तो मैं, अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया, हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया, और बच्चे आते रहे, और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा
1: हाँ,
0: है
1: लेकिन वो तब की बात है ना,
0: जी।
1: इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको,
0: जी तो वो
1: हाँ
0: अखबार में विज्ञापन देखा
1: हाँ
0: आपने।
1: तो वो देखा। मैंने तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो, मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो
0: अच्छा, ऐसे ही
1: सकता
0: कह
1: है।
0: दिया।
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से, और फिर 1-2 महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे थे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। से 1 महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते 1 महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होगी।
0: जी
1: एनीवे, तो आई ज्वाइंड एनएसडी, एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड। फॉर द फर्स्ट ईयर इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर, और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुँच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा एनएसडी में, एंड वो था इब्राहिम।

0: अलका जी,
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब सात जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलका जी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, ही वॉज अ फैंटेस्टिक टीचर। अब बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊँ मैं, इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम
0: हाँ
1: इब्राहिम
0: हाँ
1: अलकाजी
0: बिल्कुल।
1: था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था,
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन।
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए।
0: जी जी
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया।
1: पत्नी जो होती है
0: हाँ, कालिदास की पत्नी,
1: जी।
0: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं। और वो मुझे मज़ा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलका जी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वज़न नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा, मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है। आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ, करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया।
1: वाओ।
0: हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी।
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी
1: जानी थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास
1: ओम
0: में थे,
1: जी।
0: और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर, वो बात और है। तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं, घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा,
1: जी
0: उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ।
1: वाह।
0: और ओह, रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका, वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है,
1: वाह
0: इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन हिली। हमें बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे, तो ये एक साल में बहुत सीखा अलका जी साहब से। और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए, कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब
1: जी
0: टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया उन्होंने, मतलब पूरा यही बदल दिया। दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी, राजधानी की, वे पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने। और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह
0: वेरी
1: बनाते
0: गुड।
1: हैं।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: जी हाँ दोस्तों, आपना रेडियो सेट पर आपे ट्यून कर्यु छे विविध भारतीनी विज्ञापन प्रसारण सेवानुं अमदावाद केन्द्र 96.7 मेगाहर्ट्ज पर। गीत ने संगीत मळे, एक वक्ता ने रसिक श्रोता मळे अने श्रोता ने विविध भारतीनो संग मळे तो 96.7 एफएम पर मनोरंजननी महफिल आपोआप सर्जाय। विविध भारतीनो सरगम कार्यक्रम તમે છો તમારા પોતાના જ રેડિયો દોસ્ત અને હોસ્ટ પ્રજ્ઞેશ વ્યાસની સાથે। તો સરગમની તાન પર આપના રેડિયો સેટ પર પહેલું ગીત તમારા માટે।

0: श्रेणी रेडियो फीचर्स दस्तावेजी श्रेणी वार्ता कथन ऑडियो सीरीज इनोवेटिव फॉर्मेट आधारित कार्यक्रमों की श्रेणी पॉडकास्ट सीरीज क्वीज कॉम्पिटिशन संगीत आधारित कार्यक्रमों जेमा शास्त्रीय उपशास्त्रीय सुगम संगीत अने लोक संगीत कार्यक्रमों AIR ब्रॉडकास्ट कोड तथा कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग कोड ने अनुरूप होवा जोईए। आ कार्यक्रमों हिंदी अंग्रेजी के निर्धारित प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करवाना रहेशे। दरेक एपिसोड नी अवधि अपवादरूप परिस्थितियों ने बात करता 14 मिनिट अथवा 28 मिनिट नी होवी जोईए। NIPP हेठळ तैयार थयेल योग्य कार्यक्रमों नुं प्रसारण प्रसार भारती आकाशवाणीना निर्णय मुजब आकाशवाणी नेटवर्क जेमा राष्ट्रीय प्रादेशिक अने स्थानिक रेडियो स्टेशनों पर थई शके छे। वधु माहिती माटे प्रसार भारती अने आकाशवाणीनी वेबसाइट prasarbharti.gov.in/NIPP अथवा akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF ની અવશ્ય મુલાકાત લો। જાહેરાત પૂરી થઈ।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
2: દેશની સુરીલી ધડકન વિવિધ ભારતી, આપ છો 96.7 FM સાથે। પ્રસ્તુત છે કાર્યક્રમ સુરીલી સાંજ, જેમાં આપ માણશો ગુજરાતી ફિલ્મી ગીતો। આંખમાં નાદાનિયત રમતી રહે એટલે જ તો તું સ્વપ્નવત મને ગમતી રહે, આંખ ગેરાતી રહે અંધકારની રાત સન્મુખ ચિત્રવત તું હસતી રહે।

मेरा साया फिल्मनु गीत हतु आशा भोसलेनो स्वर, संगीतकार मदन मोहन, गीतना शब्द लख्या राजा मेहंदी अली खाने। विविध भारती 96.7 एफएम पर आप सांभळी रह्या छो कार्यक्रम सुरीला सफर। मोहब्बत पासेनी आ भेट सुंदर लईने आव्यो छु, हूँ मारा बे नयन में सात सागर लईने आव्यो छु। मोहब्बत तो दिलनी गुलाबी रमत छे ने बाकी बधुंय सगळू गलत छे। मने माफ कर ओ शिखामणना दाता, मने रीत पागल थवानी आ गमे छे।

या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र।

फौजी साथियों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। फौजी साथियों, आज हम शौर्यगाथा के नायक देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया की अदम्य वीरता की शौर्यगाथा से परिचित होंगे।

न जाने कितने वीर सपूतों की शौर्यता की कहानी हम सुनते आए हैं। आज भी जब हम किसी फौजी सैनिकों के किस्से पढ़ते हैं, बस एक कल्पना में खो जाते हैं, कैसा होता होगा उनका जीवन, देश के प्रति उनका अथाह प्रेम, कब दिल में जागा होगा, कौन सा पल होगा जब उन्होंने देश सेवा में अपना संपूर्ण जीवन सौंपने का संकल्प लिया होगा, किस उद्घोष ने उनके मन में देश प्रेम की लौ जलाई होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, ऐसे जोश से भरे उद्घोष सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब बात हमारे जाबाज फौजी सैनिकों की होती है तो उनके मुख से निकला नारा इतना बुलंद होता है कि जो भी सुनता है, देश प्रेम, भारत माता और तिरंगे की सुरक्षा सम्मान के प्रति उसका रोम रोम जोश जज्बे से भर उठता है, जिसमें देश के प्रति जीने और कुछ कर गुजरने का हौसला, मजबूत इरादा लहू बनकर नस नस में दौड़ने लग जाता है। हम तो यही कहेंगे, हर फौजी की कहानी जब तक दोहराई जाएगी, जब तक आकाश में सूरज और चांद रहेंगे और हवाओं का सांसों में आना जाना रहेगा, धरती की गोद में शूरवीर संतानें जन्म लेती रहेंगी, ऐसे भारत माता के सपूतों को शत शत नमन करते हुए हम स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया की कहानी के उन पहलुओं को जानेंगे जिससे देश गर्व से भर उठा है।

फौजी साथियों, भारतीय वायुसेना के कमान मुख्यालय ने 6 सितंबर की देर रात आदेश दिया कि दुश्मन के हवाई ठिकानों पर जवाबी हमला करेंगे। आदमपुर टाइगर्स के कमांडिंग ऑफिसर ओपी तनेजा उस वक्त कार्य को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 7 सितंबर की सुबह का समय तय किया था। दुश्मनों के हवाई अड्डे पर हमला बोला जाएगा। पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 1 घंटे में खत्म करने का आदेश दिया गया था। विंग कमांडर ओपी तनेजा की अगुवाई में ये मिशन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शुरू हुआ। बेस पर दुश्मन का हमला जारी था और जब स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया को आदेश मिला, वे उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे कि तभी एंटी एयरक्राफ्ट गनों से गोलाबारी शुरू हो गई।

फौजी साथियों, इतनी गोलाबारी हो रही थी कि पूरी जगह धमाकों की आवाज गूंज रही थी। इस खतरे के बावजूद मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के जज्बे ने उन्हें तनिक भी कमजोर नहीं बनाया और बड़ी ही कुशलता, असाधारण सटीकता और साहस के साथ उन्होंने अपना विमान आकाश में उड़ा ही दिया। हमला इतना भयानक था कि रनवे की लाइट्स क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में भी वे साहस और निर्भीकता से विमान को बादलों में चीरते हुए ऊंचाई पर ले चल पड़े। ये पायलटों और ग्राउंड क्रू के अपने मिशन को पूरा करने का अटूट संकल्प की एक मिसाल थी। दुश्मन के हवाई अड्डे पर हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया का सामना एक दुर्जय दुश्मन विमान स्टार

0: फाइटर से हुआ जिसे दुश्मन सेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट पायलट उड़ा रहे थे। दुश्मन का विमान तेज गति और आधुनिक हथियारों से लैस था। इस स्टार फाइटर विमान ने आकाश में उड़ रहे विमानों पर बमबारी करनी जारी रखी। स्क्वाड्रन लीडर देवया का विमान उनकी रेंज में आ चुका था, फिर भी वे अपने आप को बचा रहे थे और जवाबी हमले का जवाब भी दे रहे थे। भीषण हवाई लड़ाई जारी थी। वे इतनी कुशलता से विमान उड़ा रहे थे क्योंकि उन्हें अनुभव बहुत था, कई हमलों से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गोलाबारी से उनका विमान क्षतिग्रस्त हो चुका था। उन्होंने दुश्मन के विमान पर पलटवार हमला किया और उसे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। देखते ही देखते दुश्मन सेना का विमान अपना नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के गिरते ही उसके पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया। इधर स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया का विमान भी तेजी से क्षतिग्रस्त होता हुआ दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर गिर पड़ा। फौजी साथियों, इस हादसे के कारण उनका कुछ पता नहीं चल सका कि क्या वे बचे। उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। बाद में उनके ठिकाने के बारे में कोई और जानकारी ना मिलने पर उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया। शौर्य गाथा का बाकी हिस्सा सुनेंगे अंतराल के बाद।
1: ITI માં પ્રવેશ મેળવવાથી વંચિત ઉમેદવારો માટે પ્રવેશ મેળવવાની વધુ એક તક. પ્રવેશ સત્ર 2026 અંતર્ગત બીજા રાઉન્ડ માટે ITI ઓનલાઈન એડમિશન સિસ્ટમ પરથી ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ 19 જુલાઈ થી 22 જુલાઈ 2026 સુધી ભરી શકાશે.
2: 7 બજે હોતી હૈ સૈનિકોં કી શૌર્ય ગાથા, કહાનિયા અદમ્ય સાહસ કી, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका विशेष जयमाला कार्यक्रम में स्वागत है। फौजी साथियों, कई सालों तक ऐसे वीर योद्धा को उनके वीरतापूर्ण कार्यों की पहचान नहीं मिल सकी। एक ब्रिटिश लेखक के वृत्तांत के माध्यम से ही भारतीय वायुसेना को उनकी असाधारण वीरता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन्हीं आधार पर सन 1988 में स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

इस तरह से वे मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी बन गए। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से।

ऐसे वीर शहीद की युद्ध कुशलता को युगों युगों तक याद किया जाएगा, जो उनके कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण है। फौलादी सीना ताने जो नभ में तिरंगा लहराते हैं, ऐसे वीर सपूतों पर ये सारा जहां नाज करता है।

फौजी साथियों, स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवया की पत्नी श्रीमती सुंदरी देवया ने युद्ध के लगभग 23 वर्ष बाद अपने पति को दिए गए देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र को स्वीकार किया। इस सम्मान से उनका मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया। उनके पति की शहादत को सम्मान मिला।

फौजी साथियों, ऐसे पराक्रमी वीर योद्धा स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया को दिल से नमन, प्रणाम और अभिवादन करती हूँ। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में शौर्य गाथा की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुति सहयोग दिया मनीषा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले ने। तो अब दीजिए अनुमति, जय हिंद।

0: अभी आप सिंगापुर हो गया? अजाने कब से खड़ा हूँ, निगोरी सड़क पार करना मुहाल है। एक मरी चिट्ठी उधर लेटर बॉक्स में डालनी है और मैं यहाँ खड़े खड़े बुढ़ा हो गया। अरे अरे भैया, अरे भैया संभाल के। अरे अरे
1: अल्लाह,
0: मर गया। जिस्म की हर हड्डी अपनी जगह छोड़ गई। कलेजा और किडनी आपस में आ मिले हैं, फेफड़े लापता है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे ओ भाई, सांसें महंगाई जैसी चढ़ रही है, दिल की धड़कन ईमान जैसी डूबती जा रही है। ओफ, सारा बदन बारसी लोना हो गया। अरे ये किसने अपना ट्रक हमारे ऊपर चढ़ा दिया?
2: अरे बड़े मियाँ, ट्रक नहीं, ये मेरी साइकिल है। साइकिल बचाते बचाते भिड़ गई। माफी चाहता हूँ, 8 साल से चला रहा हूँ मगर आज तक नहीं भिड़ी।
3: अबे ओए, अंधा है क्या?
0: अरे हम भी 7 साल से पैदल चल रहे हैं, आज तक नहीं भिड़े। हाय लोगों, अरे सहारा देकर उठाओ भैया। जनाजा ही बचा है।
4: अरे अरे, इसे तो पुलिस में देना चाहिए। बड़े मियाँ को कैसा तोड़फोड़ डाला है।
0: ठहरो ठहरो भैया, ठहरो। ये मरा नाश पीटा तो हमें बकैयन लगता है।
2: क्या क्या बकैयन? कौन बकैयन? अरे मैं तो ब्रजेश चंद्र हूँ।
0: हाँ हाँ, अरे नाम बदल लो या चोला, पर हो बकैयन। अरे हमारा चश्मा कहीं लुढ़क गया तो क्या, हम हम हम बकैयन को नहीं पहचानते? ए लोगों, ये हमारे मोहल्ले का बकर इलाही उस बकैयन है।
1: बकैयन?
0: अरे साल भर पहले ये मजदूर फिल्म के चक्कर में बम्बई भाग गया था। आज हार लगा है।
2: अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप?
1: क्यों भे, बकैयन है तू?
0: अरे लाना था इस पर, बाप इसका सड़क पर भीख मांगते मांगते चल बसा और ये मैयत पर भी नहीं आया।
1: बहुत बुरी बात है।
2: क्या बक रहे हैं आप? क्या बक रहे हैं? मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क हैं।
1: पीडब्ल्यूडी में?
0: अरे हमसे मत उड़ो बेटा, हमसे मत उड़ो। और माँ इसकी फांसी लगाकर पार हो गई और ये जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, चिरकूट कहीं का।
2: माय गॉड, मेरी मम्मी को भी मार डाला। अरे मैं तकैयन नहीं हूँ।
0: अब तकैयन नहीं, बकैयन, बकैयन।

0: बकैयन?
1: अरे लोगों, इसका छोटा भाई 6 महीने से लापता है।
2: 6 महीने से?
1: हाँ, न जाने कहाँ कूड़े से पॉलीथीन बीन रहा होगा बेचारा।
3: हद हो गई, मेरा पूरा खानदान निपटा डाला इस बुड्ढे ने। चश्मा क्या गुम हुआ, अच्छा भला आदमी चुकैयन हो गया। दिस इज टू मच, आई कांट स्टैंड इट एनीमोर।
1: देखा देखा, अंग्रेजी में हल्का रहा है। अरे हम भी अंग्रेजी पढ़े हैं बकैयन, तेरे अब्बा को अंग्रेजी में भीख मांगना हम ही ने सिखाया था।
3: फिर वही नॉनसेंस, मैं बकैयन नहीं हूँ।
4: ज्यादा बको मत, तुम बकैयन हो या नेपोलियन, चलो जाकर अपने खर्च पर बड़े मियाँ का चश्मा बनवाओ, वरना पुलिस में दे देंगे।
3: हे भगवान, कहाँ फंस गया, कॉलेज की फीस के कुल 35 रुपए जेब में है। खैर देखते हैं, उठो बुड्ढन।
5: दैट्स गुड, संभाल कर ले जाइयो, बुजुर्ग आदमी है बेचारे।
3: आइए आइए मियाँ, संभल के, आगे मेन होल है, कहीं घुस गए तो अरेबियन सी में ही बॉडी मिलेगी। जाने किस मनहूस की सूरत देखकर चला था सुबह।
1: अरे बकर यार, अब बहुत कमजोरी लग रही है बेटा, अब कहीं शरबत अनार या शरबत बादाम वगैरह पिलवा। फटाफट
3: पहाड़ में गया बकैयन, यहाँ कहीं गन्ने के रस का ठेला भी नहीं है, कहीं किसी चश्मे वाले की दुकान भी नजर नहीं आती।
1: अरे तो मुझे टांगे या टैक्सी में किसी बड़े नर्सिंग होम में ले चल।
3: स्विट्जरलैंड न ले चलूं, फूस की टट्टी गुजराती ताला। हाँ, वो ऑप्टिशियन का बोर्ड लगा हुआ है, आओ बड़े मियाँ। अंग्रेजी मत छोको, जल्दी बढ़ो, कॉलेज के 2 पीरियड पहले ही मिस हो गए हैं। अरे देख के मियाँ, ठहरो, बोर्ड देखने दो, डॉक्टर WW ब्लैकआउट।
1: हाँ, WWW ब्लैकआउट,
3: ऑप्टिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट। बाप रे, खुद का नाम ब्लैकआउट और है आई स्पेशलिस्ट। बुलाता हूँ
6: डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब।
7: यस, क्या मांगता है?
1: मांगता? अरे बेकमंगा का, आटा ही दे दीजिए।
3: डोंट माइंड हिम प्लीज, आप ही डॉक्टर ब्लैकआउट हैं?
7: और क्या, तुम्हें हम पोस्ट ऑफिस नजर आते हैं।
3: सॉरी डॉक्टर, इन बुड्ढन का चश्मा बनवाना है।
7: तो इस काम के वास्ते 6 लोग क्यों आया है?
3: अच्छा, हम तो 2 ही हैं।
7: वेट वेट, आई सी 3 टाइम्स विदाउट ग्लासेस, तर्जुमा बिना चश्मे मुझे हर चीज 3 गुनी नजर आती है। मेरा चश्मा कहाँ है? नाउ ओके, आप तो हैं।
3: और डॉक्टर, आपने गले में 3-3 चश्मे क्यों लटका रखे हैं?
7: लिसन, एक चश्मा दूर का चीज नजदीक देखने के वास्ते, दूसरा नजदीक का चीज दूर देखने के वास्ते, और तीसरा चश्मा इन दोनों चश्मों को ढूंढने के वास्ते। नाउ फॉलोड, तर्जुमा अब तुम समझे। अंदर आओ, आओ,
3: आइए।
7: कीप द ओल्ड मैन ऑन दैट स्टूल, तर्जुमा बुड्ढे को उस स्टूल पर रख दो, आंख का जांच होगा।
3: अरे चाचा, स्टूल पर बैठ जाओ। बाल्टी में क्यों बैठे जा रहे हो?
1: अरे स्टूल का ढक्कन कहाँ है? ढक्कन?
3: अरे ये बाल्टी है चाचा, स्टूल इधर है। हाँ, इधर संभल के बैठ जाओ।
7: ओल्ड मैन, इंग्लिश पढ़े हो?
1: इंग्लिश? अरे आई कैन टीच इंग्लिश टू योर मदर्स हस्बैंड। तर्जुमा, हम तुम्हारे अब्बू को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, समझा?
7: ओके ओके ओके, वो अंग्रेजी की तख्ती पढ़ो।
1: कौन सी तख्ती?
7: अरे वही जो सामने दीवार पर टंगी है।
1: कौन सी दीवार?
7: ओ माय गॉड, अरे इस कमरे की दीवार।
1: अरे कौन सा कमरा यार?
7: हेल विद यू, कमरा भी दिखाई नहीं पड़ता। यंग मैन, के सीरियस, मैं समझता था शॉर्ट सर्किट है, मगर लगता है पूरा ट्रांसफार्मर जल गया है। जंक्शन बॉक्स खोलना पड़ेगा, फेज चेंज होगा।
3: शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर, जंक्शन बॉक्स, फेज। अरे आप चश्मा टेस्ट कर रहे हैं या बिजली की मरम्मत?
7: यू आर राइट, हम पहले बिजली का लाइनमैन था, धंधा नहीं जमा, ऑप्टिशियन का काम पकड़ लिया। डोंट वरी यंग मैन, मुझे आखिरी कोशिश करने दो। सिस्टर,
8: कमिंग माय डार्लिंग डियर लव।
3: आपने सिस्टर बुलाया? वो डार्लिंग डियर लव?
7: दरअसल वो हमारा वाइफ भी है और नर्स भी, डॉक्टरी प्रोफेशन के हिसाब से उसे ऑन ड्यूटी सिस्टर ही बोलना पड़ता है ना।
8: बोलो हानी, हमारे को काय के वास्ते याद किया?
7: सिस्टर, अंदर किचन से आटा गूंथने वाला सबसे बड़ा परात लाओ।
8: काय को? इन दोनों बैगर्स को इधर ही खाना खिलाना मांगता क्या?
7: ओह नो, आई टेस्ट, तर्जुमा आंख का जांच। सॉरी सिस्टर, पर आ तो इधर ही है। यू गो।
8: ओके माय डार्लिंग।
7: हाँ जी बोलो ओल्ड मैन, ये गोल गोल चीज क्या है?
1: भाई बड़े डॉक्टर, हमसे लगी मत करो, ये तो चवन्नी है, चवन्नी।
7: व्हाट?

0: चवन नहीं बोलता है? ओह नो, माय हार्ट सिंक हो जाएगा। मैं ये लस्सी पीता हूँ ताकत के वास्ते।
1: ओह नो डॉक्टर, लस्सी की जरूरत मुझे है, मैं पीता हूँ।
0: गिलास इधर लाओ। ये लस्सी नहीं, साबुन का पानी है, लेंस धोने के वास्ते।
1: ओह सॉरी डॉक्टर, मैं समझा लस्सी है।
0: अब भी चैन आया, ये लस्सी ही था बट फॉर प्राइवेट यूज, पब्लिक के लिए नहीं। नाउ यंग मैन, बुढ़े का केस होपलेस है, पहले दोनों आंख के गोले निकालकर प्लेट में रखने होंगे।
1: क्या?
0: और फिर अंदर का लाइन चेक करना होगा कि कहां कहां अर्थिंग नहीं है, किधर किधर केबल डैमेज है, समझे?
1: बाप रे, बुढ़ा मर गया तो मुझे फांसी चढ़ना पड़ेगा।
2: बेटा बकैयन, अरे चश्मा पड़ने में देर है क्या बेटा?
0: अरे बैठे रहो, अभी लाइन चेक होगी।
2: अरे मुझे यहाँ से ले चल बकैयन, मुझे यहाँ से ले चल। ये कमक लाइन चेक करते करते पावर हाउस ही फूंक डालेगा, और यहाँ से ले चल बेटा।
0: अरे बैठे रहो अड्डे पर।
1: डियर डॉक्टर, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि लाइन खोले बगैर ही रोशनी आ जाए?
0: केबल में बेंतिया कचरा फंसा है।
1: वेट वेट डॉक्टर, उम्मीद नजर आती है, वो देखो, वो पुराना चश्मा, बुढ़े को ट्राई करो। अरे वो जो कोने में पड़ा है लगा कर देखो।
0: मगर तुम कैसे कह सकते हो कि वो पुराना चश्मा बुढ़े को लग जाएगा?
1: सिंपल अलजेब्रा, चश्मा पुराना, बुढ़ा पुराना, पुराना पुराना कट, चश्मा बुढ़ा, बुढ़े को चश्मा लग गया।
0: ओके ओके, लो ये चश्मा पहनो। अरे अब थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखो, लगाओ लगाओ।
2: हाय अय्या अल्लाह, अब मुझे शाम नजर आ रहा है, शाम नजर आ रहा है। डॉक्टर, कमरा, दीवार, टक्सी, लिखा है ETDDLSHSHO22WQQHH। देखो।
0: अरे बाप रे, ये तो सबसे महीन आखिरी लाइन तक सही पड़ गया मेरे कल।
2: अरे डॉक्टर, अब मुझे जन्नत तक साफ नजर आ रही है। देखो, अब मेरे अब्बा हुजूर हुक्का पी रहे हैं, अम्मी दाल बीन रही है, अब फूफा कनकैया लड़ा रहे हैं। मगर ये नौजवान कौन है? ये मरा बकैयन कहाँ भाग गया?
1: जी मैं ही मरा बकैयन हूँ, जिसके बाप भीख मांगते थे, माँ ने फांसी लगा ली, छोटा भाई कूड़ेदान से पॉलिथीन बीन रहा है, और कुछ?
2: बेटा माफ करना, अब बिना आग के लालटेन के यही होता है बुढ़ापे में बेटा।
1: मगर डॉक्टर, ये चश्मा है किसका, कहाँ से आया?
0: वेट, हमारा नर्स इधर लाकर फेंका। सिस्टर।
3: यस माय बटर टोस्ट, अभी हम तुमको बताता, हम जब शॉपिंग से लौटता था, रोड में भारी भीड़, ओ माय गॉड, क्या देखा, एक ओल्ड मैन साइकिल से टकरा कर गिर गया, बस इधर ही हमारे को ये फटीचे चश्मा मिल गया, हम लाकर इधर कोना में डाल दिया, सोचा किसी के काम आएगा, हमारे को दाम मिल जाएंगे।
1: ओह, तो ये बड़े मियाँ का ही खोया हुआ चश्मा है, भगवान का शुक्र है कि मिल गया।
2: अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, अब भाई खुदा हाफिज, अब डॉक्टर, अब बाय बाय। हाय लेडी, सी यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।
3: अरे बुढ़ापे में मेरे को गाय को मस्का मारता है ओल्ड चिंपैंजी।
2: आओ।
1: अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, शायद कॉलेज का लास्ट पीरियड मिल जाए।
0: अहीं, ठहरो, तुम किधर को जाता है? माय फीस 35 रुपीस ओनली।
1: फीस का है कि जिसका चश्मा था उसे मिल गया।
0: कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन फीस जल्दी निकालो।
1: वरना
0: आई कीप टू हैंड्स, तर्जुमा मैं दो हाथ रखता हूँ, गर्दन टेस्ट कर डालूंगा। अंदर घर में मेरा साला फैंटम भी है, 3 बार बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज ले चुका है। फैंटम।
4: आ रहा हूँ, दस्ताने पहन लूं जरा।
1: नहीं, फैंटम जी को क्यों कष्ट देते हैं, ये लीजिए 35 रुपए, मेरी फीस का तो सत्यानाश होना ही है।
3: क्या बोला सर, तुम्हारा फीस का रुपया है?
1: हाँ सिस्टर, आज ही जमा करानी है।
3: ओ कीप द मनी विद यू चाइल्ड एंड गेट गोइंग।
0: तर्जुमा, बच्चे पैसा अपने पास रखो और जाओ, फूट जाओ।

ये थी झलकी लालटेन की वापसी। इसे लिखा केपी सक्सेना ने, निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ

0: हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
2: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
3: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
4: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।

0: रहेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
2: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। तीन एक दिवसीय क्रिकेट

0: मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म बनवास से, आवाज़ विशाल मिश्रा और पलक मुछाल की थी। गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रांझना से। आवाज़ें श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा दत्त की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए,
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
6: मैं और मेरी तन्हाई।

यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाज़ें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जॉय बरुआ की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे रिश्तों का कोई नाम न दो। हृदय सौंसर्वी उतरी जती गुलजारनिया रचना, संगीत निर्देशन हेमंत कुमारनु अने स्वर लता मंगेशकरनु। फिल्म हती खामोशी। हूँ माथी तू, हूँ अने तू माथी अमे, अने अमे माथी आपणे। सूर्योदय जीवननो, संध्यानो अल्प विराम, अने रात्रिनो एज पाछू पूर्ण विराम। वच्चे अनेक अवतरणोनी आ दुनिया, जे आपणा नथी छता आपणा बनी साथ आपे छे, तेज तो बने छे साचा हमसफर।

ध्वनि तरंगों की लहरों पर आपने ट्यून किया है 96.7 FM विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम छाया गीत। जुड़े रहिए आपकी अपनी विविध भारती से।

0: अच्छा या गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: देखो टर्मरिक

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। समय के स्केल पर हमें नहीं पता कि कब हमारे दिल पर लिख गया था तुम्हारा नाम। समय की शुरुआत से चल रहा है जो सफर, उसे समय के आखिर तक कायम रहना है। हम और तुम समय के थपेड़ों के बावजूद मिलते रहे हैं, हम चलते रहे हैं साथ, और बस साथ ही चलते रहना है हमें। ये सफर जिंदगी का नहीं, समय का सफर है, और हर पल के चेहरे पर तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए।

दुनिया बधावासियों का मेला है। ये धक्के मारती दुनिया, ये कंधे चीलती दुनिया, ये दुनिया जिसमें ख्वाब टूटते हैं, ये दुनिया जिसमें लगती है दिल की खरोंचें। कभी कभी लगता है कि दुनिया की भीड़ से अलग हो कोई ऐसा अलग कोना जहां हम तुम साथ बैठ सकें और अपने दिल का राग छेड़ सकें। ऐसा कोना जहां हम खुद से मुलाकात करें और फिर बस वो लम्हे हमेशा के लिए खिल जाएं दिल की वादियों पर।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए।

आवाजों का कोई मजहब नहीं होता। आवाजें दुनिया की तमाम सरहदों के पार चलती हैं। हम सब महज एक शख्स नहीं, एक किरदार नहीं, आवाजें हैं हम। हम आवाजों की दुनिया के मुसाफिर। हमें कायम रहना है हमेशा एक आवाज की शक्ल बनकर। तुम्हारी आवाज गूंजती रहे कानों में, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे बांसुरी की मीठी तान, जैसे झरने की प्यारी मुस्कान।

तुम्हारी बातें गूंजती हैं हमेशा कानों में, गूंजती है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान का एक सुर है जो इस कमरे में गूंजता रहता है हमेशा। तुम नहीं होती तब भी तुम होती हो अपनी सुरीली बोली बनकर। तुम्हारी आवाज को अपने कानों में सजा लेते हैं हम, और बस उसके बाद हमें दुनिया में किसी चीज की दरकार नहीं होती।

0: छाया गीत में आज थे भूपिंदर सिंह के कुछ बेमिसाल नगमे, फिल्मों के नाम, थोड़ी सी बेवफाई,
1: आज बिछड़े हैं,
0: फिल्म मौसम,
1: ढूंढता है फिर वही,
0: फिल्म किनारा,
1: मेरी आवाज ही पहचान है,
0: और फिल्म दूरियां,
1: सामने
0: आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari.